0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860 0300-585-8481।
1: आसमानी हर्बल ऑयल 100% ऑर्गेनिक न्यू हेयर ग्रोथ। खाने के फवायद: जिस्म की इजाफी चर्बी और मोटापे को कम करे, ब्लड प्रेशर और शुगर को नॉर्मल रखे, मर्दाना कमजोरी को दूर करे, हाफजा तेज करे और खून की कमी को पूरा करे, मैदे की गैस, जलन, तेजाबियत, बदहजमी और मैदे का दर्द खत्म करे, बवासीर, खूनी उबादी, कब्ज और मतली में मुफीद है। मालिश के फवायद: सर दर्द, कमर दर्द, पठों का दर्द और जोड़ों के दर्द से पाए निजात, बालों को लंबा, घना और सिया चमकदार बनाए, खुश्की और सिकरी और सर की जिल्द के दानों से निजात दिलाए, बच्चों के चलने में दुश्वारी को खत्म करे, फालिज के मरीजों और हर किस्म के जख्म के लिए भी मुफीद है, जिस्मानी थकावट, जहनी सुकून, हर किस्म की एलर्जी के लिए भी मुफीद है। तरीका इस्तेमाल: सुबह के वक्त निहार मुंह 2 चम्मच 1 कप पानी या दूध में मिलाकर पिए। आसमानी हर्बल ऑयल वाहिद वो तेल है जो अंदरूनी और बैरूनी तकालीफ के लिए यकसा मुफीद है। राब्ते के लिए कॉन्टेक्ट अस 0345-923-2860।
0: आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम कुदरती अज्जा से तैयार करदा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम का रोजाना इस्तेमाल आपके चेहरे को बनाए तरोताजा। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम आपके चेहरे से दाग धब्बे, कील, मुहासे, छाइयां और आंखों के गिर्द स्याह हल्के खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मोजर असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 0345-9232-860 0300-585-8481।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन नेटवर्क,
2: पैगाम अमन है,
3: प्यार की एक दुनिया लेकर,
4: मोहब्बत समेट कर।
5: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में,
4: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा।

हो जाएगा। ओके जी, तो आज हमने बात की डिटेल के साथ, मैंने समझाया, अगर किसी को समझ नहीं आया तो अल्लाह अल्लाह करे कि उसे समझ आ जाए, और मैं कुछ भी नहीं कह सकता। अब मैं थोड़ा सा जा रहा हूँ, अगर कोई मैसेज वगैरह है तो मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे, देखता हूँ। और सवर पुख्तों के तहत दसो अस्सलाम वालेकुम चाचू खान, मतलब पता लिखने चाहिए दस टाइम बोले दे सलमान खान बड़े पत्र लिखी करेंकुम चाचू टूल फैमिली वाला नासियो पर गर्मो के प्रोग्राम और डेर खान के माशाला प्रोग्राम डेर खाइस्ता दे सलमान खान बैठे ग्राम न करूस बल चाहे करे शामिल कर। It was Shayan who have participated our show through text messages. Thank you, Mr. Salman from Bertigram. Okay, to our next, आज हम बात करेंगे, हमारे पास जो नए वो भी हम लाए हैं उस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद सबसे पहले हम उस पर जो पहले शो में हमने जिस वर्ब को डिस्कस किया था, हम थोड़ा सा उसको रिलाइज क्या कहते हैं कि उसको रिवाइज करते हैं, अपॉलॉजी, अब हम उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, तो चलिए विदाउट ऑफिस चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिछले शो में हमने एक वो पे बात की, वो है वर्क, काम करना, डब्ल्यू ओ आर के वर्क, काम करना, इसका पास्ट है वर्क, डब्ल्यू ओ आर के इडी वर्क, और पास्ट पार्टिसिपल भी वर्क, डब्ल्यू ओ आर के इडी वर्क। और पिछले शो में हमने जिस वो पे बात की, सेकंड जो है वो हमारे पास है राइट, डब्ल्यू आर आई टी ए राइट, लिखो लिखना, रूट पास एंड रिटन, डब्ल्यू आर ओ टी ए रूट, एंड पास पार्टिसिपल डब्ल्यू आर आई डबल टी एंड रिटन। जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ब था पिछले शो में वो है वॉक, चलो चलना, डब्ल्यू एल के वॉक, चलो चलना, डब्ल्यू ए एल के ई डी वॉक पास्ट एंड डब्ल्यू ए एल के ई डी वॉक पास्ट पार्टिसिपल। ए बी जो हमारे पास नेक्स्ट है अबाइड, ए बी आई डी ई अबाइड पाबंद होना, ए बी ओ डी ई अबोर्ड पास्ट एंड अबोर्ड आल्सो बी ए बी ओ डी ई अबोर्ड पास्ट पार्टिसिपल। ब्लीड खून बहना, बी एल डबल ई डी ब्लीड खून बहना, ब्लीड पास्ट एंड बी एल ई डी ब्लीड पास्ट पार्टिसिपल। ओके टू वर्ल्ड नेक्स्ट, आज यदि अखबारों की जमीन सर कम होगा बोलने वो वर्क काम कार का बोले राइट लिखल का बोले वाक गर्जई दल और अबाच कम दे पाबंद यानी रचा पाबंद की दल बस कम दे मुंग सर दे ब्लीड द वीन बहिदल खून बहना यानी द वीनी बहिदल अगर हर जीना द फोजीना द लहसुन अदखी नबल देना हम शिकल भी बही गिन तम सवाई ब्लीड। नेक्स्ट नन चिका मंगसरा दो रजे परावन के चिका मंगसरा वो बधी हकी तरफ जर जरा मंडवल और कुमा टाइम कम दे बॉइल बी ओ आई एल बॉइल बॉइल बॉइल बी ओ आई एल ब आ अ ब बॉइल बॉइल उबलना। इसका हमारे पास है पास्ट बी ओ आई एल डी बॉइल्ड एंड पास्ट पार्टिसिपल भी बॉइल्ड है। ओके बी ओ आई एल डी बॉइल्ड। जो हमारे पास नेक्स्ट है बी आर ई ए के ब्रेक तोड़ना, ब्रेक ब्रेक तोड़ना, ब्रेक तोड़ना, ब्रेक तोड़ना पास्ट हमारे पास है ब्रोक बी आर ओ के ई ब्रोक एंड पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास है ब्रोकन। ओके ब्रो कैन। ओके टू वन नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है एड ए डबल डी एड जमा करना, ए डिड पास्ट ए डबल डी ए डी एडिड इन पास्ट पार्टिसिपल आल्सो ए डिड ए डबल डी ए डी एडिड। टू वन नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है आस्क ए एस के आस्क पूछना, ए एस के आस्क पूछना, ए एस के ए डी आस्क पास्ट एन ए एस के ए डी आस्क पास्ट पार्टिसिपल। ए एन एस डब्ल्यू आर आंसर जवाब देना, ए एन एस डब्ल्यू आर आंसर जवाब देना, ए एन एस डब्ल्यू आर ई डी आंसर एंड पास्ट पार्टिसिपल इज आल्सो आंसर, ए एन एस डब्ल्यू ई आर ई डी आंसर्ड। यानी जमंग का ननेख पर उन्होंने है चिकम जमंग वो दी अगा चिकम मंग द फेल वतवा यानी हर हर का कारण छे अगम मंग का वो पके मंग सर डिफरेंट कारण है जी कि पके मंग सर अवलनी चे मंग वी हा वी बॉयल।

अपॉलॉजी ई मेल से दूर हो जाओ तो हम इसके डिफरेंट यूज करते हैं, गेट आउट ऑफ माई साइड हम भी यूज करते हैं, और एक और सेंटेंस भी है अभी मेरे जहन से निकल गया, गेट आउट ऑफ माई साइड भी हम कह सकते हैं, और इसमें साथ में हम ये और भी कहते हैं, लेकिन अभी मेरे नजर से वो क्या कहते हैं, गेट आउट ऑफ हियर, यस ये भी कह सकते हैं, और थैंक यू मिस्टर। और नेक्स्ट हमारे पास जो है फोन नंबर पे, जब हम कहते हैं कि ये मामला यार मेरे समझ से बाहर है, तो हम किस तरह इंग्लिश में कहेंगे, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चलो मैं आपको लेट मी टेल यू, दिस इज आउट ऑफ माई माइंड, ये मसला मेरी समझ से बाहर है, दिस इज आउट ऑफ माई माइंड, ये मसला मेरी समझ से बाहर है। जब हम किसी को कहते हैं मड़ा समह कोले सूजी में पख कर दाओ, समह कोले हलवा में पख कर दाओ, समह कोले सालन में, तो उस तक करने लोगों तक तस्वीर सी आई, जस्ट टेस्ट इट, लोगों तक सकना हुआ कर, जस्ट टेस्ट इट, आप चखो तो सही, आप चक करके देखो तो सही, या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि आप चखो तो सही, जस्ट टेस्ट इट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जो आज का सेंटेंस है, फर्स्ट वो है प्लीज गिव मी, बड़ा मेहरबानी करके मुझे, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन, प्लीज गिव मी योर बुक्स, जब हम किसी से कुछ चीज कोई चीज भी मांगते हैं तो हम क्या कहेंगे, प्लीज गिव मी, और जो

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम लतीर योशमार कलूना तालीम पर मैदान की खपल खिदमत तरसर कभी नकाम बची खपल बची गणी दौर हाजिर तालीम वरकवल सरा सरा और माशुमानों के इखलाकी किरदार साजे बांधे हम खुसूसी तवज्जो साथी कमचे तालीम पर मैदान के और बटाग्राम के दतीर उद्रव कालूना टॉप पोजिशन होल्डर इदारा दा अलहम्द इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल बटाग्राम जमुन खुसूसियात द दौर जदीद तालीम वरकवल और माशुमानों के इस्लामी अकदार रावस्तल जो सफा सुथरा और तालीमी माहौल वरकवन के इदारा द स्कूल खपल ट्रांसपोर्ट और द सिक्योरिटी बेहतरीन इंतजाम कंप्यूटर लैब और द लोबो खपल मैदान खुमश्ता नो द खपल औलाद मुस्तकबिल रोखा नकड़े मुंगसरा द प्ले ग्रुप नवाला तर नाइन्थ क्लास पूरी द तुलबो तालिबात प महदूद सीटों बांधे दाखिले शुरू दी नो पता याद साथ अलहम इस्लामिक इंटरनेशनल पब्लिक हाई स्कूल निस्त वावडा ऑफिस गेरवली बाजार बटाग्राम मजीद द मालूमातु द पारा द टेलीफोन शमेरा दा 0997-310-444 मोबाइल नंबर दी 0345-94-72-137।